0: अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हो?
1: वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ।
0: और साहब वो कैसे हैं?
1: ठीक है वो भी, कल हज पर जा रहे हैं।
0: अच्छा माशाल्लाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है।
1: सुना है जब उस दर से बुलावा आता है तो बंदा मदीने जरूर जाता है। पता नहीं आका मुझे कब बुलाएंगे, मैं कब मदीना देखूंगा।